0: 春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: और सुपरवाइजर के व्यवहार गहरे हैं।

0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话哦，你们活不下去，我们也活不下去。
2: और चुपचाप निकल भी बाहर गया रहे हैं यहाँ तो देख अच्छे हमें सीधा वो सुख मस्माई दिखा रहे हैं उसके ऊपर
0: 何氏下的狂歌，日夜不息雕琢山河。
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分。
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。

0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话哦，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: और चुपचाप निकल भी बाहर गुहार हैं यहाँ यात्रा है आज हम इसके लिए वो सुबह मस्माई दिखा रहे थे इसका
0: हे 氏下的狂歌日夜不息雕琢山河
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分
4: 现在割草全部收起来牛秋天冬天吃
0: 红叶是秋的绝唱尽情挥洒岁月浓雾
5: 我们家客人躺在房间里能看到白哈巴最美的风景
0: 冰雪是冬的沉淀静候万物破茧重生
6: 冬果子是我们四个理解中的一个家我很喜欢这里很温暖
7: 新疆是个母亲湖嘛在我儿子这一代了也养两代人了
0: 山河不老生生不息